स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है, ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा, इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्यमों को नॉलेज, फाइनेंस और नए मार्केट से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे शहरों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, भारतीय सभ्यता में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है, यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है। स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे। कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए तैयार किए गए सिद्धांत इंडिजीनियस नॉलेज को क्लाइमेट एक्शन का महत्वपूर्ण आधार बनाएंगे। फ्रेंड्स, इन चारों स्तंभों पर आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स के माध्यम से हमने इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रिक्स में विकसित सॉल्यूशंस का लाभ केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन्हें ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं के अनुरूप एडेप्टेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहिए। साथियों, मैं मेरे निजी अनुभव से कह सकता हूं कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज, बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
9: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
10: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
8: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli.

0: Perhaps the Bharatiya Janata Party has been saying that, the Congress should speak about how India has been setting the agenda and how world is watching about India's, soft diplomacy and also the diplomacy that has prevailed as far as the New Delhi Declaration is concerned. Rahul Gandhi ignited that whole debate, stating that 80% of Indians are non-vegetarian in this country. Perhaps my own sister and I love non-vegetarian, but also as she brilliantly cooks chole bhature, and posted a picture of chole bhature, to which the Bharatiya Janata Party has slammed the Congress Party.
1: All right, we leave it there. Aishwarya Jain giving us the very latest there. In fact, viewers, a political fight has actually erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul, who's also the leader of opposition, Rahul Gandhi, has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying 80% of India is non-vegetarian. AIMIM's Waris Pathan took a jibe as well, saying that mutton, chicken gone missing, and joking that the Fufa Mamu Khalu would be upset. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khanvi to, of course, other aspects of what India has to offer, from the Himalayan Kuchi to South Indian Puriyal and Millet Pulao as well. What was meant to be a celebration of India's food and culture and its diversity has now served up a fresh political fight. In fact, even as the BRICS summit has been a big diplomatic win and a big diplomatic moment for India, the Prime Minister Modi and Xi Jinping meeting, the bilateral meeting, has triggered a fresh political showdown. Congress Party has stepped up its attack on Prime Minister Modi, saying and questioning the approach with regards to China and alleging that India's position on border issues has been weakened. The opposition has actually alleged and asked, why is it that the government has softened? Its allegation is that it has softened its stance on China and whether territorial concerns are actually being ignored. The BJP, meanwhile, has hit back, calling the BRICS summit a historic success, saying that China has extended a hand of friendship. The party also says that India's global influence is growing, with the Pahalgam terror attack being strongly condemned in the joint declaration as well. Listen in to some reactions coming in.
2: And China ke saath hume अपनी बॉर्डर के ऊपर जो हमारे इंक्रोच हो रहा है उसके ऊपर बात कर करके ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि चाइना का और हमारा इसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर है सबसे बड़ा तो चाइना और हमारे बीच में, वो दूर होना चाहिए और निश्चित रूप से ब्रिक्स इससे मजबूत होगा।
3: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई, मोदी जी की अगुवाई में बहुत ही सौम्य भाव में निर्णय हुए। लेकिन कांग्रेस वाले जो कह रहे थे कि ब्रिक्स से क्या निकलने वाला है, अब वो पूछें, उनसे जवाब लीजिए। क्या आर्थिक रिश्तों पर बात हुई, बायलैटरल्स मीटिंग हुई, चीन ने भारत के साथ दोस्ती का एक नया हाथ बढ़ाया, राष्ट्रपति पुतिन तो है ही हैं हमारे, क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने पीएम की तारीफ की, क्या ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने पीएम के बारे में बड़े अच्छे उद्गार प्रकट किए। तो कांग्रेस पार्टी जलेंगे, तभी अपना मन बड़ा करिए।
4: अपने जितने विदेशी मेहमान आए हैं अपने देश में, और निश्चित तौर से आज जो केंद्र की सरकार है वो तो कार्यक्रम तो बड़े बड़े कराती है, पर उसका कितना लाभ देश की जनता को, देश के लोगों को, देश को मिलता है, अभी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर से एक पूरे लोगों का यहाँ जुटान हुआ, पर देश के लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिलेगा ये देखा जाएगा, ये आगे निश्चित पता चलेगा।
5: सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भारत की बात, भारत की के प्रस्ताव और भारत के विषयों को जिस गंभीरता के साथ में लिया जाता है, मैं मानता हूँ कि भारत के बढ़ते हुए प्रभाव और प्रभुत्व दोनों का दर्शन वहाँ होता है। भारत जिस तरह से FTA कर रहा है, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ है, हमारा अमेरिका के साथ में FTA की वार्ता चल रही है, ब्रिटेन के साथ में ऑलरेडी FTA हो गया है, और दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। मैं मानता हूँ कि हमको पॉजिटिव नोट पर उस दिशा में आगे देखना चाहिए।
3: मुझे लगता है कि जो

0: How dare you take up that space for those who always arrive in style? The stunning new Baleno. Dare to go glam.
1: देवभूमि उत्तराखंड, जहां महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और विश्वास जगा रही हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
6: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये
7: कुछ इससे भी अनोखा
6: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Show.
8: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
9: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग हजारों सपने टॉप मेंटर्स कई शीर्ष नेतृत्व बदलने देश के स्टार्टअप का सीन करने करोड़ों का निवेश आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ तो मंच है शानदार करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना बस रजिस्ट्रेशन करो पाओ निवेश में मदद मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार और हाँ ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharatam. From ideas to impact, from dreams to nation building, let the journey begin. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटोर्स को. तो प्लीज वेलकम ब्यूटी और ग्रूमिंग इंडस्ट्रीज के किंग माने जाने वाले, विजन को बिजनेस में बदलने वाले रेने कॉस्मेटिक्स के फाउंडर आशुतोष बलानी. हाय आशुतोष.
1: हेलो, हाउ आर यू?
0: वेलकम टू वंदे मातरम.
1: थैंक यू सो मच.
0: 26 साल के बैंकिंग के तजुर्बे से इन्होंने सिखाया कि असली वैल्यूएशन हाइप में नहीं, हिसाब में होती है. प्लीज वेलकम कैक्टस पार्टनर्स के मास्टरमाइंड और स्टार्टअप इकोसिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर, ऑल्सो नोन एज द एंटी पावर लॉ इन्वेस्टर, मिस्टर राजीव खालमबी. हाय राजीव, वंदे भारतम किस मंच पर आपका स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट. एक वक्त था जब 10 लाख का लोन मिलना भी इनके लिए स्ट्रगल था, और आज इन्होंने नियरली 1700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है. हमारे इनोवेटर्स के लिए इनसे बड़ी इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती. शी इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज. प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट मेंटोर, उज्वा की को फाउंडर आरती गिल. हाय आरती, वेलकम टू वंदे भारत.
2: थैंक यू

0: so much.
1: Please have a seat. हर बिजनेस को एक फाउंडर मिल जाता है, लेकिन हर बिजनेस को उसे नए शिखर तक ले जाने वाला लीडर नहीं मिलता। 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स और लाखों सेलर्स के ग्रोथ पार्टनर, प्लीज वेलकम फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति। हाय कल्याण, सो गुड टू हैव यू ऑन वंदे भारतम।
2: इट्स अ प्लेजर राजू, थैंक यू।
1: प्लीज हैव अ सीट।
2: थैंक यू।
1: इन्होंने 22 साल की उम्र में एक मैनेजमेंट ट्रेनी से अपना सफर शुरू किया और आज इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी को लीड कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अपने पिताजी गौतम अदानी जी की विरासत और पोर्ट बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक वैसे ही आज इस नए मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिस्टर करण अदानी। Hi Karan, thank you for your time and thank you for coming to Vande Bharat. Please have a seat. Welcome to Vande Bharatam. Karan, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे।
3: One advice I would give is के keep working hard, be grounded and never give up learning because every day there is something new to learn from everybody who you work with.
1: And that's got to be a motto of your family, na? Be grounded. And that's one thing that comes across loud and clear. Be grounded. And that's how you should be living, I think. You know, be grounded. I think that's one thing that they should learn. Unko ye samajh mein aana chahiye, kyunki yahan se jaane ke baad mein jab wo udaan bharenge, to ye advice bahut kaam aayegi ki please always be grounded. So welcome to Vande Bharatam. Shuru karte hain. Bulaye hamare jo innovators hain. To hamare jo pehle innovator hain, wo mere shares hain. Jaipur se hain. बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें बिजनेस करना आता है और मुझे एक्टिंग, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज ये इतना इंक्लूसिव है कि हम दोनों साथ में इस मंच पर खड़े होंगे। प्लीज वेलकम फ्रंटियर मार्केट की इनोवेटर अजयता शाह, जयपुर राजस्थान से। So nice to have you here.
4: Thank you so much for having me.
1: मेरी छाती ना ऐसे समय सीना जो है वो चौड़ा हो रखा है मेरा, क्योंकि आप जयपुर से हैं, आप मारवाड़ी हैं, और उससे ज्यादा इसलिए कि आप उन लोगों को सशक्त बना रही हैं जिन्हें बहुत पहले सशक्त हो जाना चाहिए था। आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन, यू नो, टू मेक अ वुमन स्पेशली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, फ्रॉम अ विलेज, टू मेक अ फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज आई हैव फिगर्ड दिस एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट सब कुछ करती हैं वो, बस उन्हें एक मलाल रहता है उनकी जिंदगी में कि उन्हें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस नहीं होता है। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। I think your pitch is ready. I'm very, very sure.
4: Yeah.
1: You look very confident.
4: I'm happy to be here.
1: So. Yes, and we're happy to have you here.
4: Yep.
1: और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
4: So hello mentors, I am Ajayta Shah, founder of Frontier Markets. भारत इंडिया के tier 4, 5, 6 गांवों को villages अगर अपन देखें तो आज भी 80 करोड़ ऐसे जने हैं जिनके पास उनके जो products और services की जरूरत होती है वो पहुंचते नहीं उनके पास। और ऐसा नहीं है कि solutions नहीं है, innovators नहीं है। But to reach 7 lakh rural villages in India, you need infrastructure, you need deep rural customer understanding, and most importantly, you need a trusted distribution network. So what is the solution? It's women. Why? Because mahila jo hai, unke paas bahut badi poonji hai bharosa ki, aur wo literally kundli nikal sakti hai sab log ki. So welcome her into our Frontier Markets platform. Frontier Markets has become the rural distribution infrastructure, layering an operating level with women and a scale level with technology. Using our AI-enabled Meri Saheli app, Sahelis become, they become entrepreneurs, but they become digital dukans. And that was the vision, but she's also using technology to gather customer insights, do demand generation, build credit history, facilitate assisted commerce, and then do delivery and services. We've done about 800 crores worth of sales on products and services. We have about 210 plus partners on our platform that help us deliver the services to the last mile. And we are in 5,000 villages across 4 states of the country. Hum yahan par kyun hain? Hum chahte hain ki 10 lakh saheli hone chahiye. And we should be able to service every single rural family in last mile delivery. But also, we're looking for product partners and brands and innovation. So join us in getting involved. I'd love to understand ki aapke level pe hum kaise jud sakte hain aapke saath to scale this. आज 4 स्टेट्स में हैं एंड हर स्टेट में गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है, बट वो गवर्नमेंट के पार्टनरशिप्स और बढ़ाने हैं। सेकेंडली, आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आ रहे हैं वो कम है. वी नीड मोर इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट. एंड थर्ड ऑफ कोर्स, स्ट्रेटेजिक कैपिटल अलाउज अस टू बिल्ड आवर टेक्निकल कैपेबिलिटीज. सो दीज आर प्रोबब्ली द थ्री मेजर आस्क्स फ्रॉम माय साइड.
0: दैट्स ग्रेट वर्क अजयता. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट यू. बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को नहीं भारत को कैटर करते हैं और ये उनमें से एक है. तो सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एम्पावरिंग वुमेन ऑफ इंडिया एंड डूइंग राइट बाय भारत.
2: यू हेल्प द लेडीज सेट अप देयर ओन बिजनेस, इज दैट व्हाट यू डू?
4: हमारे एसईजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज 15 करोड़ महिलाएं दैट आर पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड मिशन. उसमें से लगभग 25% आर नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स, विच मीन्स कि कोई ना कोई दुकान या टेलरिंग का काम या ब्यूटी पार्लर या घर से कुछ बना करके वो बेच रहे हैं. सो उन्होंने टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया था बिफोर वी इवन एंटर्ड, और वो एसईजी के साथ जुड़ी हुई है. हम आते हैं, सो वी डिजिटाइज हर, वी बिल्ड हर कैपेसिटी एंड वी डाइवर्सिफाई हर इनकम अपॉर्चुनिटी.
5: कैन यू वॉक ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर्स.
4: सो आवर जीएमवी लास्ट ईयर वाज 226 करोड़, ईयर बिफोर दैट वाज अबाउट 100 करोड़. This year will be lagbhag around 450 crores. Our ratio in terms of the GMV is split based on FMCG, agriculture, digital banking services, and consumer durables. And like, let's mix that basket.
3: Just out of curiosity, is there a solution is the same for across all the states, or is it? Or you found that certain things work in one state, certain things don't work in another?
4: So I think, sir, consistency is the key to the devil's in the details, right? So SEG ka jo infrastructure hai, it's actually quite nationalized, right? So wo infrastructure, wo reach, national rural livelihood missions, wo sub is the same in every state. Obviously, language is different, but language is an easy insertion. The role of a entrepreneur is exactly the same. These women are eager to earn income. What we also know is they don't want to leave their village. Wo bahar nahi jana chahte hain. Wo 10 gaon ko sambhalna nahi chahte hain. Wo literally unke paas, honestly main bata du, 5 se 6 ghante ka time hai. Subah bahut sare kaam hai, shaam ko bahut sare kaam hai. To wo 5 ghante mein wo kya kar sakti hai, jahan wo kamai kar sakti hai, naam bhi bana sakti hai and suvidhaye bhi leke aa sakti hai. To wo standard practice actually, agar aap tier 4, tier 5, tier 6 ke gaon mein dekho, it's actually exactly the same. Sab kisan family hai. Right, 80% is kisan family. So, wo standard infrastructure ki wajah se, this has become a very easy model. So, hum log Gujarat mein hain, Andhra mein hain, UP mein hain, Rajasthan mein. We're about to enter Bihar, Jharkhand, and Maharashtra because now we're getting invited.
6: You're raising the money right now towards OPEX.
4: It's more for tech.
6: For tech, okay.
4: It's a tech build, and it's an HR build. We want to bring in more senior folks because there's a bunch of things that we need to bring in that will allow us to strengthen.
6: Yeah, please let us know if we can be helpful in any way. I think it's a noble cause you're pursuing and takes a lot of courage to do what you're doing.
3: I think it would be great if we can connect separately. Our foundation team would love to engage with you.
4: I would love that.
3: We work in almost 323 different
4: Correct.
3: Locations.
4: Yeah.
3: And most of our engagement is in rural. So we would love to see how we can help in terms of increasing your reach over there.
4: That would be amazing.
0: No, so Karan, I think time for a wings.
7: Golden
0: wing here.
7: I was just thinking the same thing.
3: You guys think?
7: Yeah?
3: Yeah?
7: Okay.
4: Thank you
3: so much.
4: I'm really looking forward to
3: your
4: idea. Like, thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody.
8: Raita, you're amazing.
4: Thank you.
0: Best of luck.
8: Thank you.
1: How are you feeling?
4: I'm feeling now calm because ab khatam ho gaya. But also quite excited that ab shuruaat ho gayi.
1: तो हमारे वंदे भारतम परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, ये देखिए।
9: अजिता मैम, मैं यही कहूँगी कि आज जिन महिलाएं जो गांव में घरों में बैठकर अपना सिर्फ पति पर डिपेंड थी, उन महिलाओं को घर से निकालकर उनके हस्बैंड के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा जो कर दिया है, इससे उनकी परिस्थितियाँ तो सुधरी सुधरी हैं, उसके साथ साथ उनकी पहचान भी बनवाई है मैम ने।
7: ऑनलाइन के बारे में तो महिला तो बिल्कुल जानती नहीं थी, आज हमारी महिला बहुत जागरूक हैं, जिनके साथ दुकान का काम चल रहा है दुकान चला रही हैं, जिन साथ सिलाई का कार्य चला रही हैं, तो हर रोजगार से जुड़ी हैं ऑनलाइन कार्य के बारे में सीखकर। आज मैं जो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे पास गाड़ी है, प्लॉट है, मकान है, सब कुछ है।
8: मैडम का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने ये जरिया दिया और आगे ऐसी और योजनाएं लाती रहें जिससे महिलाएं आगे और बढ़ती रहें।
1: अजयता, लाइफ में ना पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स थोड़े कम। यू आर वन ऑफ देम हुज एक्चुअली डन बोथ, यू गॉट बोथ, सो वेल डन, सो सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन द फिनाले एपिसोड। आपको पता है कि जो टॉप 5 विनर्स होंगे वो फिनाले एपिसोड में आएंगे, एंड मे बी यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर गौतम अदानी। वेल डन,
5: थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
1: कोर्स प्लीज।
10: और आज वंदे भारतम के मंच पर दिखे कुछ यंग इनोवेटर्स।
11: हम सीवीड और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से रीजनरेटिव पैकेजिंग मटेरियल डेवलप कर रहे हैं टू रिप्लेस कन्वेंशनल प्लास्टिक फिल्म्स एंड इको पेपर विद अवर प्रोप्राइटरी इको कोटिंग,
10: जिनके यूनिक इनोवेशंस ने मेंटोर्स को किया इंप्रेस।
12: हमने देखा कि इंडियन स्किन के मार्केट इज बूमिंग, फिर भी इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं फॉरेन फॉर्मुलेशन या फॉरेन R&D को ज्यादा देखते थे बिकॉज दे ट्रस्टेड देम मोर, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू चेंज।
10: जहां यंग माइंड्स ने दिखाया अपना टैलेंट, वहीं कुछ जोड़ियों ने भी मिलकर दिखाया अपने इनोवेशन का कमाल।
13: वी हैव डेवलप्ड आवर 3-in-1 मेड इन इंडिया रेस्पिरेटरी डिवाइस व्हिच कैन मेजर लंग फंक्शन ऑफ ए पेशेंट्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेंपरेचर एंड पल्स ऑल इन वन सिंगल डिवाइस।
10: और ट्राई नाइनो की जोड़ी ने साबित किया कि इनोवेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती।
1: मुझे लगता है कि जो एक सपना था, जो सोचा था वंदे भारतम के बारे में गौतम अदानी जी ने, कि इस मंच पर वो सब आए जहाँ उम्र कहीं बैरियर ना हो, जहाँ तजुर्बा कोई बैरियर ना हो, तो ये आपको देखकर मुझे लगता है कि वो जो सोच है वो सार्थक होती है। वेलकम टू वंदे भारतम।
6: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: आप लोग रेडी हैं अपनी पिच के साथ में?
6: बिल्कुल
1: जी, यस। तो आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
6: नमस्ते मेंटर्स, अगर हम देखें तो आपकी गाड़ी के शीशे पे धूल होगी या टीवी के स्क्रीन पे धूल होगी या चश्मे पे धूल होगी, तो विजन और क्लैरिटी दोनों कम करती है। लेकिन अगर हम सोलर पैनल पे बात करें धूल मिट्टी की, तो उससे सोलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन का है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसमें वेस्ट हो जाता है। तो उन सबसे जुड़ी हुई इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम ट्राई नैनो टेक्नोलॉजी से, मैं हर्ष सेठी,
14: मैं डॉक्टर अंशु डांडिया, ग्रीन केमिस्ट स्पेशली एंड रिसर्च डायरेक्टर एंड को-फाउंडर ऑफ ट्राई नैनो टेक्नोलॉजी।
6: हमारी जो टेक्नोलॉजी है 3D क्वांटम क्लैडिंग इज नैनो कोटिंग। सोलर पैनल पे सबसे टॉप सरफेस ग्लास होता है, तो हम ग्लास पे वो करते हैं और एक नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सब एटॉमिक लेवल पे अमेजॉन रेन ट्री फॉरेस्ट को मिमिक करता है।
14: ये हमारी जो कोटिंग है वो अभी तक कोई दूसरी कोटिंग इसको क्लेम नहीं कर रही है, और हमारी ये सब ऑल प्रॉपर्टीज वेल एस्टेब्लिश्ड है इन द वेरियस लेबोरेटरीज, वी आर IT इंक्यूबेटेड एंड MNRE सपोर्टेड।
6: हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कोई भी पैनल, कोई भी ब्रांड, कोई भी मेक, कोई भी टाइप, कोई भी एज, कोई भी लोकेशन, एग्नोस्टिक है, सब पे लगाई जा सकती है। अगर नए पैनल है तो हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, और लगे हुए पैनल है तो हम साइट पे जाके करेंगे। और बाकी हमारा आइडिया यही है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सके। हमारी अपेक्षा अडानी ग्रुप से ये है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट किए हैं अडानी ग्रुप के साथ में, अडानी ग्रीन के साथ में किए, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किए वर्टिकल्स में हम कुछ कर सकते हैं। सीमेंट बिजनेस में, ऑयल एंड गैस में, हीट एक्सचेंजर के ऊपर ट्यूब पे कोटिंग कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अडानी ग्रुप के साथ मिलके हम बाहर एक्सपोर्ट मार्केट भी इसको कैप्चर कर सकें।
14: आपका सपोर्ट और इंस्पिरेशन हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत होगी।
15: डॉक्टर हर्ष एंड डॉक्टर अंशु, क्या एनर्जी आपकी, वेरी इन्फेक्शियस एनर्जी, सो अमेजिंग टू हियर।
6: थैंक यू मैम।
15: और आपका रेवेन्यू की जर्नी बताएंगे थोड़ा सा?
6: मैम 2022 में हमने चालू करी, तो फर्स्ट ईयर तो 10,000 करीब ही था। हाँ।
16: फिर उसके बाद में करीब 1 लाख रहा, 24-25 में करीब 1 करोड़, और लास्ट ईयर 25-26 में 3 करोड़ रेवेन्यू रहा।
15: वेरी नाइस।
3: दिस यू विल बी रिप्लेसिंग द ग्लास or this will be sprayed on top of the glass?
16: Sir, normally right now, whatever glass we are purchasing, whether from China or India, we are doing ARC coating, anti-reflective coating. और अभी नया मार्केट में ट्रेंड आया, that is called high transmission double coating. पहले ARC की refractive index around 1.35-1.4 रहती थी, अभी high transmission में 1.22 करीब 2.4 है. हमारा idea है कि हम इनको replace करें.
3: I can only say since you've requested, we would be happy to, as a group, work with you. I think we can have a more intense engagement between our manufacturing plant, solar manufacturing, as well as Adani Green, and we can do a trial and see where it reaches.
16: Absolutely.
3: We start with solar, and once it is possible, we will then look at other industries as well, other businesses.
16: Absolutely, sir.
1: I think that's what you were looking. यही उम्मीद करके आए थे कुछ ऐसा हो जाएगा आज?
16: बिल्कुल।
1: करिश्मा,
16: उम्मीद यही थी कि आप लोग बैठेंगे तो सुनेंगे।
3: But I must say your energy is something and not giving up. I think in your life you've never given up and you keep coming back to it. It's just commendable.
16: Thank you, sir.
14: Thank you, sir.
16: My performance
14: is
16: just a number.
14: Just a number. I have started this work in second inning of the life. Previously I was professor and head chemistry department from University of Rajasthan, Jaipur. And I am the pioneer worker for green chemistry in India. Wow. So that was very challenging at that time. So challenge lene ki to aadat padi hui thi bachpan se.
15: Bahut hi badhiya.
1: Main dil se ummeed karta hu ki aap log finale mein pahunche.
16: Yes.
1: And I'm sure this is just a beginning. Not second inning, this is just a beginning.
14: Humare ko ye mauka diya aap sabne yahan pe aane ka, yahi hamare liye bahut bada achievement hai.
1: Thank you so much, sir. Wish you all the best.
16: Thank you, sir.
14: Thank you so much,
1: sir. Thank you, sir. So, mentors, please, aap log scores de dijiye. So, mentors, अक्सर हमारी जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि जब माँ बाप होते हैं, they really hope कि उनके बच्चों के सपने पूरे हो जाएं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के सपना पूरा करना चाहते हैं. हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है. प्लीज वेलकम हैदराबाद तेलंगाना से आए हमारे अगले इनोवेटर टाइगर एस्टर और उनके को फाउंडर जितेंद्र देसाई. हाय.
17: हाय.
1: वेलकम टू वंदे भारत.
17: थैंक यू सो मच.
1: मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी के पापा की ड्रीम थी. आप में से किसके पापा की ड्रीम थी?
17: Mine.
1: आपके क्या ड्रीम थी आपके पापा की?
17: सो माय डैड ऑलवेज लुक्ड एट एनर्जी एफिशिएंसी एंड द प्लैनेट सेफ्टी एज वन ऑफ द प्राइम थिंग्स टू वर्क ऑन.
1: सो व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप यू वर ऑलवेज अवेयर दैट दिस इज व्हाट बॉदर्स योर फादर?
17: सिंस आई कैन रिमेंबर प्रोबब्ली 11 इयर्स ओल्ड ऑनवर्ड्स.
1: वाओ सुपर. सो आर यू रेडी विद योर पिच?
17: यस.
1: योर टाइम टू शाइन स्टार्ट्स नाउ.
17: थैंक यू.
18: Hi, good day, mentors. My name is Jitendra Desai or JD. We started this firm in 2022 to solve a very big decarbonization problem. ACs, while they cool inside, they are throwing very hot air outside, and that has a multiplying effect, and it just gets worse and worse. This technology is more than 120 years old, and we are here to disrupt it with something that is made in India, that is climate appropriate, and can be scalable for the global south first and then the world. We started this because heat waves are getting more intense, more long, and this has a direct impact on lives and livelihood. And there's a very urgent need for India to solve it. So we brought something that reduces energy bills by more than 80%. Verified by third party. It works on your single phase 5-amp plug points. And these are systems that use normal tap water like your washing machine, but give AC-like cooling. With our systems, you can keep the doors, windows open. It will not impact the cooling at all. That's excellent indoor air quality. And we make a 5-ton unit, but if you need 10 tons, you add 2 units. One unit cools 750 square feet. It can go all the way to cooling airports at 7.5 lakh square feet or more. The temperature we are exhausting is 25. The temperature we are supplying is 15.5. We cool the atmosphere while cooling the space inside as well. That's the beauty of this technology.
17: So we started one, which was the smallest one that we ever made. It kind of looks like the Minion in the cartoons. That's good enough to to cool a bedroom in a PM Avas Yojana kind of setting. And then we are working on the R&D phases where we can do away with compressors to handle the biggest problem that we have, which is humidity.
18: We are very keen to scale this up. India needs this urgently, and we are raising about 45 crores right now. We would love to have non-dilutive grants to complete our R&D for the platform that solves for hot, dry, humid climates. That's about 5 to 8 crores in R&D that we need. And we'd love to cater to heat stress zones, which is more than 460 districts in India itself, and scale this up massively. And we'd love to then support the Global South. That's our ask. Thank you, Rajiv.
2: Fantastic.
17: Thank you, Rajiv.
2: Can you tell us a little bit about the technology? What is it that's different? And, you know, does it always have to be placed at a window? So how does it work?
17: You know, the technologies that we've had so far, we've had ceiling fans, we've had air coolers, and then we've had air conditioners. So each technology has a limitation. Now, a cooler is able to go give you temperatures 4 degrees C above the wet bulb, whereas the ambient technology allows us to go 3 degrees below the wet bulb in peak summer. So that means you're getting air conditioning-like cooling when you need it the most. And the most beneficial part of it is that we're using 5 times less of water than an air cooler. So that gives us that added advantage to go in.
2: Can you give us some idea of you know, how much you'll have achieved in terms of revenues and you know, your unit economics?
18: We have done about 1.2 crores in sales so far. That's translating to about 40 units across India, from Jaipur down south to Vellore. And we found partners and we have identified at least 48 different cities where we are seeing a lot of demand. And that's where I think this fundraise will help us accelerate. And
6: upfront investment for the customer is like a bit higher than the air cooler, is it? Or how do you price it right now?
17: So right now our pricing is at par with the highest efficiency central air cons. So you're talking about your VRFs and your VRV technologies. We are at par with them. The benefit that the customer seeks is that instead of paying 70 rupees for air conditioning, he's now paying 7.5 to 8 rupees.
15: At what humidity level does it work, and at what humidity level would the system fail, would the product fail?
17: Excellent question. So the ambiator as it is right now, the AMB 750, works up to 60 to 62% RH.
15: Oh, wow, that's great, because most of that technology works only till 40 is what I understand.
17: Correct.
15: Because most of the places in India are actually at a very high humidity, what I was studying.
17: Yeah, so we predominantly service hot and dry climates with this product.
15: Okay.
17: And our focus is to work on the humidity problem once we have an acknowledgement from your end.
15: Got it.
3: I must say, two things. I think one, anything to do with climate change, and that's something that you guys are trying to solve, is a billion-dollar idea. Because today, if you see globally, any product which has to do with climate change is going to be successful. So you guys are on the right track, and you know, I've personally seen your product. So I must say that it's a very good product. We'll be happy to support in terms of you know, scaling it up. From whether it's from our real estate business or from our airport business, we'd be more than happy to support in whatever way we can.
1: Thank you. That's a huge compliment.
0: Congratulations, guys. I think you got what you came here for. Congrats.
17: Yeah, thank you so much.
1: Absolutely.
17: Thank
1: you. Well done. I mean, that's a huge thing to happen. I mean, if the Adani Group supports you, and if they're giving you an inroad into things, I think it can't get better from here.
17: It's absolutely wonderful. Thank you so much.
1: Before you leave, let me tell you, if your pitch actually good enough to reach the finale, then probably we'll see you in the top 5 winners. All right, so wishing you all the best and hope to see you in the finale episode.
17: Thank you so much. Thank you so much.
1: Thanks a lot. Karan, why did it interest you so much?
3: Personally, I'm a big fan of you know, being carbon neutral, and you know, I think running a business and being, you know, environmentally friendly can go hand in hand, and you can actually do better from a business perspective also. Second, inside story, my wife keeps cribbing me about, you know, air conditions. She hates it, so she looks for solutions which can eliminate air conditioning. So she is the one who had told me that this is the one product that we need to look at. So that's how I know about this product.
1: I think the idea is great.
3: Great.
1: Mentors Course.
19: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
1: आज वंदे भारतम के कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं वंदे भारतम के ऐप पर, हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। नई सक्सेस स्टोरी से आपको मिलवाने का सिलसिला चलता रहेगा। वंदे भारतम के साथ फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
13: MyCorp is one of the pioneers of 3D concrete printing technology. And now we are on a mission to democratize this technology.
3: Sports business, we are developing almost 20 million square feet of warehousing and work on your technology.
20: Oh my God!
1: What is happening here?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: what your day throws at you? Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियल मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
0: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. Our pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये.
3: कुछ इससे भी अनोखा.
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद. कमला पसंद पान मसाला.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: से 26 के इस राजनीतिक एरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद वो समाप्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में देश की जनता आगे बढ़ी है। हम सभी एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम ये एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। ये सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र प्रशासनिक इकाई मतलब राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश में चलेगा। हर जिले में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और बूथ तक सेवा संकल्प अभियान को लेकर हम देश की जनता तक पहुंचने वाले हैं।
1: We're slipping into a quick short break, but come right back. Lots more lineup for you here on NDTV.
2: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: An elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galoti to paneer, Himalayan gucci, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
1: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो-दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
2: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
3: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी, तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
0: And well, earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come out with and why there was no non-veg on that platter, I earlier spoke with Chef Sanjeev Kapoor, who of course needs no introduction, the celebrity chef, and this is what he had to say. You know, it's of course showcasing India's vegetarian platter from south to north to even Gujarat and other states on one rather plate. But talk to us more about, we're also learning that it is also perhaps good for easy digestion that the leaders were given vegetarian and light sort of vegetarian meal.
4: See, I think first and foremost, when a menu is being planned, of course, you keep everything in mind, and digestion, health, everything is kept in mind when chefs are designing the menu. And it's not, you have to understand there would be some degree of difficulty that would be brought in dishes. There would be some innovation that would be brought in. There would be authenticity. And also, remember, food plays a very important part in food diplomacy. In that, we have to keep everything in mind. It is not, when a menu is being planned, the last thing that goes into a chef's mind is that how would it break the world? Never. It is how we bring the world together. Okay. That's every chef, no matter which part of the world, whether vegetarian, non-vegetarian, I think that's how a chef's mind thinks.
0: In other news, Union Home Minister Amit Shah said that Seva Sankalp Abhiyan will begin on September 17th, and this is being done to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday and his 25 years in public life. Shah said that the campaign, built around the slogan Jan Seva Hi Prabhu Seva, will focus on public participation in the goal of making India a developed nation by 2047. The Home Minister also made a major announcement on the Uniform Civil Code, saying that he was confident that the UCC would be implemented in all 21 BJP NDA ruled states before 2029. He accused the Congress-led era of policy paralysis, coalition compulsions, corruption, casteism and dynastic politics, saying that the country had since then been freed.
5: Dheer sare rajyon mein कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। 2014 से पहले हमारे देश की राजनीति का दिशा तीन नासूरों से पीड़ित था, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद। 2024 से 26 के इस राजनीतिक एरा में भ्रष्टाचार

0: में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
1: एक वोट बैंक को टारगेट कर कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
2: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कम से कम डिनर में तो जो है एक शादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
3: And well, earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come out with and why there was no non-veg on that platter, I earlier spoke with Chef Sanjeev Kapoor, who of course needs no introduction, the celebrity chef, and this is what he had to say. You know, it's of course showcasing India's vegetarian platter from south to north to even Gujarat and other states on one rather plate. But talk to us more about, we're also learning that it is also perhaps good for easy digestion that the leaders were given vegetarian and light sort of vegetarian meal.
4: See, I think first and foremost, when a menu is being planned, of course, you keep everything in mind, and digestion, health, everything is kept in mind when chefs are designing the menu. And it's not, you have to understand there would be some degree of difficulty that would be brought in dishes. There would be some innovation that would be brought in. There would be authenticity. And also, remember, food plays a very important part in food diplomacy. Mm. In that, we have to keep everything in mind. It is not, when a menu is being planned, the last thing that goes into a chef's mind is that how would it break the world? Never. It is how we bring the world together. Okay. That's every chef, no matter which part of the world, whether vegetarian, non-vegetarian, I think that's how a chef's mind thinks. Mm.
3: In other news, Union Home Minister Amit Shah said that Seva Sankalp Abhiyan will begin on September 17th, and this is being done to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday and his 25 years in public life. Shah said that the campaign built around the slogan Jan Seva Hi Prabhu Seva will focus on public participation in the goal of making India a developed nation by 2047. The Home Minister also made a major announcement on the Uniform Civil Code, saying that he was confident that the UCC would be implemented in all 21 BJP NDA ruled states before 2029. He accused the Congress-led era of policy paralysis, coalition compulsions, corruption, casteism, and dynastic politics, saying that the country had since then been freed.
5: Dheer sare rajyon mein कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। 2014 से पहले हमारे देश की राजनीति का दिशा तीन नासूरों से पीड़ित था, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद। 2024 से 26 के इस राजनीतिक एरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद वो समाप्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में देश की जनता आगे बढ़ी है। हम सभी एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम ये एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। ये सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
0: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galoti to paneer, Himalayan guchi, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो-दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे. तो ये काम हम नहीं कर सकते.
4: एक वोट बैंक को

0: टारगेट कर हर चीज़ में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
1: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
2: And well, earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come out with and why there was no non-veg on that platter, I earlier spoke with Chef Sanjeev Kapoor, who of course needs no introduction, the celebrity chef, and this is what he had to say. You know, it's of course showcasing India's vegetarian platter from south to north to even Gujarat and other states on one rather plate. But talk to us more about, we're also learning that it is also perhaps good for easy digestion that the leaders were given vegetarian and light sort of vegetarian meal.
3: See, I think first and foremost, when a menu is being planned, of course, you keep everything in mind, and digestion, health, everything is kept in mind when chefs are designing the menu. And it's not, you have to understand there would be some degree of difficulty that would be brought in dishes. There would be some innovation that would be brought in. There would be authenticity. And also, remember, food plays a very important part in food diplomacy. Mm. In that, we have to keep everything in mind. It is not, when a menu is being planned, the last thing that goes into a chef's mind is that how would it break the world? Never. It is how we bring the world together. Yeah. That's every chef, no matter which part of the world, whether vegetarian, non-vegetarian, I think that's how a chef's mind thinks. Mm.
2: In other news, Union Home Minister Amit Shah said that Seva Sankalp Abhiyan will begin on September 17th, and this is being done to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday and his 25 years in public life. Shah said that the campaign built around the slogan Jan Seva Hi Prabhu Seva will focus on public participation in the goal of making India a developed nation by 2047. The Home Minister also made a major announcement on the Uniform Civil Code, saying that he was confident that the UCC would be implemented in all 21 BJP NDA ruled states before 2029. He accused the Congress-led era of policy paralysis, coalition compulsions, corruption, casteism, and dynastic politics, saying that the country had since then been freed.
4: Dheer sare rajyon mein कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। 2014 से पहले हमारे देश की राजनीति का दिशा तीन नासूरों से पीड़ित था, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद। 2024 से 26 के इस राजनीतिक एरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद वो समाप्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में देश की जनता आगे बढ़ी है। हम सभी एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम ये एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। ये सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र प्रशासनिक इकाई

0: अलोंगसाइड हिम।
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है। फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं। मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके। आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
0: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galoti to paneer, Himalayan guchi, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: Jo yahan pe mans ke naam ke upar target karte hain, unke do do mukhyamantri mandir mein baithkar mans kha rahe hain. क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
4: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
5: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international